0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।
1: अभी बजाएगा ना भिड़ो।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

Olive 106.3 FM Gio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: नींद के बादलों के पीछे है मुस्कुराता हुआ कोई चेहरा, चेहरे पर बिखरी एक रेशमी लट, सरसराता हुआ कोई आंचल और दो आंखें हैरान हैरान सी।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर, मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लूलो मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
3: हाय, मैं हूं विवेक आनंद ओबेरॉय। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार.

0: सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलू स्टोर्स में।
1: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।
2: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
3: ओ,

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. Radio

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
1: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
3: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
4: Hi, मैं हूँ सोहाली खान and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
5: Olive सुनो, Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार. लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ.
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनेस.
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर offer.
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स CB 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
2: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव, जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। Culture travels, football connects, and Hiwari is bringing Qatar to the world.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
4: हाय, मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
5: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: सस्रीकाल जी, मैं हाँ हरभजन मान। तुसी सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास।
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
2: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
3: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
2: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Aap sun rahe hain Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

मम्मी ने भी देखो यही सपना देखा था कि मैंने प्यार किया कि सुमन जैसी होंगी, लेकिन मैं तो मैंने प्यार क्यों किया कि कैटरीना जैसी निकली। क्या कर सकते हैं अब। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड वीकेंड बिता के कैसा लग रहा है, लगा ना कि बस यार देखो सोए थे, उठ गए, ऑफिस आ गए, बीच में क्या हुआ कुछ याद ही नहीं है। होता है, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं। अब देखिए मैं आ गई हूँ तो 3 घंटे अमेजिंग फन करने वाले हैं, अमेजिंग गाने सुनने वाले हैं एंड बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं, जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए एंड जिसके बारे में हमें बात नहीं करना चाहिए उस बारे में भी। मैं बात कर रही हूँ मूवी रिव्यू के बारे में। सो थोड़ी सी देर में आके कौन सी मूवी नई रिलीज हुई है उसके बारे में आपको बताऊंगी, कौन सी ऐसी मूवीज हैं जो अब आप देख सकते हैं, रिकमेंड आपको करूंगी मैं मूवीज, फैशन के बारे में बात करेंगे, खाने पीने के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले मौसम के बारे में बात करेंगे वापस आकर। तब तक जो है अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर अरिजीत सिंह की आवाज में, इसे एंजॉय करो। गाने का नाम है ख्वाब देखूं। अब जाग दी जाइए, वीकेंड जा चुका है, ख्वाब देखने का कोई स्कोप नहीं है। मैं हूं आपकी कशिश, स्टे ट्यून्ड और कहते रहो जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
3: गुलराज सिंह
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
3: जियो बिंदास।
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: अरिजीत सिंह और जसलीन रॉयल की आवाज में मित्रा रे गाना जो है आपने इंजॉय किया। एंड मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे शो पे मुझसे ज्यादा अरिजीत सिंह जी जो है वो सुनाई देते हैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ। लाइफ मस्त है। एंड यार अरिजीत सिंह ने इतने सारे गाने गाए हैं कि मेरी अगर प्लेलिस्ट में से आप अरिजीत सिंह के गाने हटा दो तो उसमें कुछ नहीं बचता। मतलब बचता है लेकिन दो तीन गाने बचते हैं और वो भी ऐसे वाले गाने होते हैं जो नहीं सुन सकते सब। मतलब सबका टेस्ट की बात नहीं है, तो एकदम ही गजल सॉन्ग होंगे या तो एकदम ही डांस नंबर होंगे। ऐसे मिड टेम्पो वाले गाने जो है मैं नहीं सुनती हूँ, मैं बस टेम्पो वाले गाने सुनती हूँ। देसी लोग समझ पाएंगे इस जोक को। खैर बात जो है हम मौसम की करने वाले थे। पिछले दो दिनों से टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है कंपेरेटिवली पिछले एक हफ्ते के। सो अगर मैं अभी इस वक्त के टेम्परेचर की बात करूँ तो टेम्परेचर हो रहा है 38 डिग्री सेल्सियस। आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। एंड आपके दिल को ठंडक देने वाली मैं बात बता दूं कि शामें जो है वो अब थोड़ी थोड़ी ठंडी हो जाएंगी, यानी 28 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है बट कंपेरेटिवली टेम्परेचर कम है। सो ये हमारे यहाँ का टेम्परेचर हो रहा है। अगर आपके यहाँ कुछ अलग टेम्परेचर हो रहा है तो बता दो मुझे 3311063 पर। ज़रा मैं क्रॉस चेक कर लूँ कि ये जो मेरा गूगल है ये मुझे सही टेम्परेचर बताता है या नहीं बताता है। वैसे मौसम को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए, माहौल में थोड़ी ठंडक ऐड करने के लिए जो है कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। कूल सॉन्ग
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।
0: सोनू निगम की आवाज में अब मुझे रात दिन। किसका ख्याल है, चाय का ख्याल है, खाने का ख्याल है, और कोई मेरे ख्यालों में नहीं आता। सुरिंगम की आवाज में ये अमेजिंग वाला ट्रैक एंजॉय करो। मैं आती हूँ थोड़ी सी देर में चाय पी के। स्टे ट्यून्ड, कहते रहिए जियो बिंदास।

ये आई लव यू क्या होता है यार, कहो ना कि तेरे नाल प्यार हो गया। बस आप लोगों को भी अगर ये कहना है तो आप कह सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। वेलकम जी 106.3 रेडियो पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड हम ना ऐसे ही बैठ कर मतलब बॉलीवुड के आइकॉनिक फादर्स के बारे में जो है बात कर रहे थे, तब मेरे सामने आया, आंखों के सामने आया यश रायचंद का चेहरा, यानी कभी खुशी कभी गम के अमिताभ बच्चन जी का चेहरा। एंड मुझे अब ऐसा लगने लग गया है कि यश रायचंद जो जी थे वो इतने बुरे थे भी नहीं यार। मतलब वो बेचारे अपनी परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन के लिए ही तो सब कुछ कर रहे थे। एंड अगर ये नहीं होते तो राहुल और अंजलि कभी एक नहीं होते। हर स्टोरी में एक छोटा मोटा विलन तो देखो होता ही है, एंड पापा जी जो है वो कभी विलन नहीं होते। वैसे अमिताभ बच्चन जी से मुझे ये भी याद आया कि अमिताभ बच्चन जी जो है वो अभी सेल्फ डाउट में चल रहे हैं। हाँ जी, उनकी एक रीसेंट पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इतना कुछ मैंने अचीव कर लिया है, इतने सारे लोग मुझे प्यार करते हैं, मैंने इतने पैसे कमा लिए, इतने सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिया, लेकिन फिर भी कभी कभी जब रात में अकेले बैठता हूँ तो मुझे सेल्फ डाउट जो है वो घेर लेता है। अब ये जो है पढ़ने के बाद मैं सेल्फ डाउट में पहुंच गई कि जब इतना बड़ा इंसान जिसकी हाइट भी इतनी जो है ऊंची है और जिसकी करियर की हाइट भी इतनी ऊंची है वो जब सेल्फ डाउट में जा सकता है तो मैं क्या हूँ, मैं कौन सी खेत की मूली हूँ, मैं कौन से पेड़ का मैंगो हूँ। लेकिन कोई बात, उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि सेल्फ डाउट आपको होना अच्छी बात होती है, ये आपको जो है अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो बस मैं आ गई हूँ अच्छा काम करने के लिए, आपको अच्छे अच्छे गाने सुनाने के लिए। तो इसीलिए मेरे जो है प्लेलिस्ट में से मर्डर मूवी का ये ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। अग्गा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ, अमीर जमाल की आवाज में कहूं ना कहूं एंजॉय करो और लौट के आ जाओ, मैं आ रही हूं अमेजिंग अमेजिंग चीजें लेकर। स्टे ट्यून और कहते रहिए जियो बिंदास

यहाँ तक सुना ही नहीं था कि लड़की भी बोल रही है कि तुझसे शादी करूंगी, अग्री कर लिया उसने तो सारा का सारा स्ट्रेस फिनिश क्योंकि लड़की ने हाँ बोल दिया यार, और क्या चाहिए। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड बात जो है हम स्ट्रेस की कर रहे थे कि अब लाइफ में क्या स्ट्रेस है। देखिए कोई भी छोटा बड़ा स्ट्रेस हो ना, आपके अंदर जो एक बच्चा है जो आपके दिल में रहता है, जो आपके दिमाग में रहता है, उसको जो है हमेशा जिंदा रखना चाहिए, तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा। बिकॉज हम जब छोटे थे हमें स्ट्रेस पता ही नहीं था क्या होता है। सो बस इसीलिए एक स्ट्रेस हटाने का सबसे बेस्ट तरीका जो बताया गया है साइंटिस्ट के द्वारा वो ये है कि आप एक चौक लीजिए एंड उस चौक से आप बाहर जमीन पर अपने घर के बाहर जब भी आपको स्ट्रेस हो तो कुछ भी ड्रॉ कर दीजिए। टेम्परेरी वो ड्रॉ होगा, एक बार पानी पड़ेगा वो मिट जाएगा, लेकिन उससे आपका बचपन जो है वो जिंदा रहेगा। तो बस और क्या करना है, अपने दिमाग को फ्रेश कीजिए और फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर सुनिए।

0: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर।
1: ये गाना
2: तू ही दिसदा गाने का नाम है, भूत बंगला मूवी का नाम है, और फिर से अरिजीत सिंह जी आ गए हैं निकिता गांधी के साथ। सो ये गाना एंजॉय करके आइए, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।

गाने का नाम है मोह मोह के धागे। लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो मैं ना स्कूल में थी और मैं इसे मोह मोह की जगह मोमो के धागे कहती थी। यू नो, खाने वाला मोमो। अब मुझ जैसे भुक्कड़ से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो आलम पर। मैं हूं आपकी कसम शो आपके लिए जो है लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड देखिए यार, अगर खाने पीने को मिल जाए तो फिर तो लाइफ मस्त हो ही जाती है। सो इस गाने से मुझे याद आया कि मोमोज जो है वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे दिल की हेल्थ के लिए। दिल खुश रहता है ना, इसलिए दिल हेल्दी रहता है। खैर, मोमोज के बारे में फैक्ट्स बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये बात अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि ये जो मूवी है दम लगा के हैशा, जिस मूवी का ये ट्रैक था मोह मोह के धागे, वो कितनी अमेजिंग मूवी थी। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही रीवॉच की एंड कितने बारीकी से एक मिडिल क्लास घर को जो है दिखाया गया है एंड कितनी ब्यूटिफुली जो है स्टोरी को वीविन किया गया है, वो भी 90s के टाइम पे जाकर। मैं अपने मॉम डैड के साथ ये मूवी भी देख रही थी तो भी मुझे बताया उन लोगों ने कि हाँ, उस टाइम पर यही फैशन चलता था, उस टाइम पर यही सब कुछ हो रहा होता था। सो कूडोस टू द मेकर्स। एंड ये जो मूवी है 2015 में आई थी एंड 2015-16 वो वाला जो टाइम था ना, मुझे लगता है वो बॉलीवुड का आइकॉनिक टाइम था, क्योंकि सबसे अमेजिंग मूवीज, मतलब अमेजिंग मूवीज ऑफकोर्स अभी भी आती है, पहले भी आती थी, लेकिन उस टाइम पर सबसे ज़्यादा बेहतरीन मूवीज़ जो है वो आई थी। दम लगा के हैशा, तमाशा, बजरंगी भाईजान, और भी बहुत सारी मूवीज थी। दृश्यम जो है उसका बॉलीवुड वाला जो रीमेक था वो आया था। ABCD2, बेबी, तनु वेजमनु रिटर्न। सो बहुत आइकॉनिक मूवीज जो है वो उस ईयर ने या उस साल के आसपास ने हमें दी है। सो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मैं तो बस चाहती हूँ कि ये

16-15 वापस आ जाए, मैं वापस समर वेकेशन एंजॉय करूं, ये सारी मूवीज देखूं, लेकिन ऐसा कहां हो सकता है। जिद करती थी पापा से कि पापा मोमोज खाने हैं, पापा बोलते थे नहीं मैदा नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज मैं रिसर्च आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ कि मोमो जो है, अगर आप स्टीम मोमो खाते हैं तो वो किसी और स्नैक्स से ज़्यादा हेल्दी होता है। चाहे आप कचौड़ी की बात करें, चाहे समोसे की बात करें, चाहे चाट की बात करें, उससे ज़्यादा हेल्दी है मोमोज खाना। तो जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों को मोमोज खाने से मना करते हैं, प्लीज़ मोमोज खाने दीजिए, बाकी ऑयली चीज़ें मत खिलाइए। एक प्लेट मोमो जो है वो उतना खतरनाक नहीं होता जितना एक समोसा होता है। वैसे आपको क्या लगता है कि कतर के सबसे बेस्ट समोसे जो है वो कहाँ पर मिलते हैं, सबसे बेस्ट मोमोस कहाँ पर मिलते हैं? 3311063 पर मुझे बताइए आपके फेवरेट, मुझे बताइए बेस्ट। तो देखो हम कह ही नहीं सकते, सबके टेस्ट अलग अलग होते हैं। सो सबसे अमेजिंग आपके फेवरेट मोमो प्लेसेस जो है वो कौन से है मुझे बताइए 3311063 पर जो है मुझे मैसेज करके। जो तू ना था, फिलहाल अरिजीत सिंह आ गए करते थे हम, धुरंधर रिवेंज का ये गाना लेके। बातें तेरी यादों से, सो स्टे ट्यून्ड रहिए, महकी हुई कहते रहिए जियो बिंदास।

0: presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: दिस इज अमायरा दस्तूर ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास.

0: देखो मैं तो हटके हुई, मुझसे ज्यादा हटके तो कोई है ही नहीं इंसान। वेलकम बैक 106.3 रेडियो आलिफ पर, मैं हूँ आपकी कसम, सो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड पूरी दुनिया, पूरी कायनात मुझे फोमो फील कराने में लगी हुई है। वैसे तो मैं फोमो में बिलीव करने वाली इंसान नहीं हूँ, मुझे तो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होता है, फियर ऑफ इंक्लूडिंग होता है कि मुझे कोई कहीं इंक्लूड ना कर ले किसी प्लान में, मुझे जो है मेरे सोने का टाइम कहीं माइनस ना हो जाए। लेकिन फिर भी पहले जो है मैं वापस आऊँगा के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन अब कॉकटेल 2 मूवी के साथ ऐसा हो रहा है। पूरा मेरा फ्रेंड सर्कल ये मूवी देख चुका है एंड सब मुझे अलग अलग टाइप के रिव्यूज इस मूवी के दे रहे हैं। तो देखो, एक सेकेंड हैंड रिव्यू मैं आपको देना चाहती हूँ। मैंने मूवी नहीं देखी है, लेकिन मैंने लोगों से क्या सुना है ये मैं आपसे जरूर शेयर कर सकती हूँ। तो कॉकटेल 2 जो है एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है, सब लोग मुझे यही बता रहे हैं। पहली मूवी की एक्सपेक्टेशन अगर आप लेके जाओगे तो आप डिसअपॉइंट होगे, क्योंकि स्टोरीज बहुत अलग है, लोग बहुत अलग है एंड टोटली डिफरेंट जो है जोन में है ये मूवी। बस कॉकटेल की एक फ्रेंचाइजी इनको नाम देना था इसलिए इन्होंने दे दी, वरना टोटली डिफरेंट मूवी है। प्लॉट बहुत अच्छा है, तीनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। मतलब इंटरव्यूज में देख के ऐसा लग रहा था मुझे कि ये लोग तो काफ़ी लड़ रहे हैं, इन लोगों की तो कैट फाइट चल रही है कृति एंड उनकी। बट लोग मुझे कह रहे हैं कि इन लोगों की जो केमिस्ट्री है बहुत अच्छी है। एंड अगर मैं बात करूँ, गाने फैशन ऑन पॉइंट है। मतलब फैशन आप देख के जो है एक तरफ आप स्टोरी में जो है इंडल्ज रहोगे, दूसरे तरफ आप ये सोच रहे हो कि यार फ्लाइट बुक कर लूँ क्या, ये जगह कितनी अच्छी लग रही है, इनके कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। सो ये है जो रिव्यू मुझे मिला है लोगों से। अब मैं इसे कंफर्म तो तभी कर पाऊंगी जब मैं ये मूवी देख कर आऊंगी। तब तक मुझे देखो, आप लोगों पे फुल जो है भरोसा है, ट्रस्ट है। आप मुझे बताओ कॉकटेल 2 मूवी आपको कैसी लगी अगर आपने देख लिया तो। 3311063 ये जो है हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर अगर आप मुझे बता सकते हैं। तब तक एक कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो तो एंजॉय कर ही सकते हैं। देखो
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।
0: सो ये गाना एंजॉय करके आओ, हमारी मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून्ड रहो, जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

चाय नहीं पीती हूँ ना, तो मैं भी इतनी ही बेचैन हो जाती हूँ जितनी इस गाने में ये मैडम है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑल ऑफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश। शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, एंड लाइफ और ज्यादा मस्त हो गई है जब से ये न्यूज मिली है कि GTA 6 जो है वो लॉन्च हो रहा है। देखो पता तो सभी को था, और मैं भी इस पे जो है कंटिन्यूसली अपने टेक शो पर भी बात ही कर रही थी कि किस तरीके से ये जो गेम है वो अलग होने वाला है, एंड दिस इज द मोस्ट अवेटेड गेम। इतने मीम बन चुके हैं कि यार GTA 6 आने से पहले ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, लेकिन GTA 6 नहीं आ पाया। सो कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप GTA 6 के जो है फैन है, या आपको भी ये काफी अट्रैक्ट कर रही थी न्यूज। सो GTA 6 का ऑफिशियल रिलीज जो है वो November 19, 2026 में फिक्स जो है हो चुका है। रॉकस्टार गेम्स ने हाल ही में इसका एक ऑफिशियल बॉक्स आर्ट जो है वो रिवील किया है, और June 25 से डिजिटल स्टोर्स और रिटेलर्स पर इसके प्री ऑर्डर्स जो है वो शुरू होने वाले हैं। यानी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि June 25 आपने डेट देखी है तो तब से जो है ये आपके पास आ जाएगा, नहीं, प्री ऑर्डर्स जो है वो शुरू होने वाले हैं। एंड अगर आपके पास एक पीसी है, यानी आप पीसी में ये गेम खेलने का सोच रहे हैं, तो आपको 2027 तक और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पीसी का वर्जन जो है वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है। कंसोल में जो है, और अगर मैं बात करूँ PlayStation 5 पर और Xbox Series X 5 पर जो है ही आपको ये गेम खेलने को मिलेगा। एंड जितने भी मेरी तरह GTA जिन्होंने वाइस सिटी खेला हुआ है, सो काफ़ी सिमिलर आपको इस गेम का मैप दिखने वाला है। तो मैं तो देखो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस गेम के लिए। आप कितने एक्साइटेड हो, और क्या आप गेम्स खेलते हो या नहीं खेलते हो, खेलते हो तो कौन से गेम्स खेलते हो ये मुझे बताओ 3311063। और फिलहाल देव डी मूवी से ट्राई कर आपके रेडियो सेट्स पर, गाने का नाम नयन, अमित त्रिवेदी की आवाज़ में। So stay tuned, or you're getting it, Jio Bindaas.

0: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: बाटला हाउस मूवी से ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑल ऑफ पर। मैं हूँ आपकी कसूस जो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड यार कभी कभी ना कुछ एक्ट्रेसेस मुझे बहुत ही अच्छी लग जाती है, जैसे नौरा फतेही जो है बाकी लोगों को उतनी अच्छी लगे ना लगे लेकिन मुझे जो है बहुत अच्छी लगती है। एंड ऐसी ही एक एक्ट्रेस है प्रियंका चोपड़ा, यानी या मैं कहूँ प्रियंका चोपड़ा जोनस। ये जो है मतलब अगर मैं हिंदी में कहना चाहूँ ना तो एक के बाद एक नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, यानी जो बेंचमार्क है वो बहुत हाई सेट करती जा रही है। एंड वाराणसी एक मूवी है जिसकी वो शूटिंग कर रही है, उसके बीच में एक बात उन्होंने रिवील करी है कि अब उनका एक और हॉलीवुड प्रोजेक्ट जो है वो आने वाला है। एंड गेस व्हाट, वो किसके साथ होने वाला है? एंजेला जोली जी के साथ जो है ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होने वाला है जिसमें वो काम करने वाली है। सो जितने भी प्रियंका चोपड़ा के फैंस हैं वो सब तो यार मतलब एकदम इतने ज़्यादा खुश हो गए कि मैं क्या बताऊँ कितने ज़्यादा खुश हो गए। उतने ही खुश हो गए जितना मैं जो अगला हमारा ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर है वो सुन के हो जाती हूँ। सो मेरा फेवरेट गाना इंजॉय करो, आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है
1: रेडियो

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु MasterCard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Hi, this is Kailash Kher, and you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.

0: देखिए T20 लीग खत्म होते ही लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब तो प्रीति जिंटा के दर्शन हो ही नहीं पाएंगे, अब तो प्रीति जिंटा हमें देखने को मिलेंगी ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। वेलकम टू 106.3 रेडियो आलू पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ वस्ता लेकर आ गई हूँ। एंड प्रीति जिंटा जो जी है वो कम बैक कर रही है बॉलीवुड में, एंड इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। तो 8 सालों बाद प्रीति जिंटा को हम बड़ी स्क्रीन पे देखने वाले हैं सनी देओल के साथ। सो देखो मैं तो बड़ी खुश हूँ, एंड इस मूवी के बारे में जितनी बाकी डिटेल्स हैं वो अभी धीरे धीरे पता चलेंगी, तो ये आपकी जो दोस्त कशिश है ये आपको बिल्कुल आके बता देगी। तो चिंता की कोई बात नहीं, आप तो बस अमेजिंग वाले गाने एंजॉय करो और कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार।

0: सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलु स्टोर्स में।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Life

0: बॉलीवुड अक्सर वक्त वक्त पे हमसे कई सवाल पूछता है, जिसमें से कुछ सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं और कुछ के हमें नहीं मिल पाते हैं।
1: वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड वक्त हो गया है आपको एक मूवी रिकमेंड करने का, जहाँ पर आप अपने इस खाली समय को, अगर आपके पास थोड़ा बहुत खाली समय है, तो उसे एक अच्छी कंटेंट के साथ जो है वो इन्वेस्ट कर सकें। सो सईद अख्तर मिर्जा की 1980 की एक क्लासिक मूवी एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, ये मूवी मैं आज आपको रिकमेंड कर रही हूँ। सो ये एक सटायर वाली मूवी है, अगर आपको थोड़ी सी डीप मूवीज अलग जॉनर की पसंद है, ये किसी नॉर्मल मूवी से बहुत हटकर है। स्टारिंग नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, ओम पुरी, एक ब्रिलियंट डीपली एम्पेथेटिक कैरेक्टर स्टडी है। एंड कभी कभी आपको देख के जो है बीच में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होगा, थोड़ा सा अनईजी सा लगेगा, लेकिन प्लॉट बहुत बहुत बहुत अमेजिंग है। सो एक बार ये मूवी जरूर से देखिए एंड आपको कैसी लगी ये आप मुझे बता सकते हैं 3311063 पर। अगर आपकी और कोई ऐसे रिकमेंडेशन हो जो आप मुझे देना चाहेंगे, कशिश यार ये मूवी एक बार ट्राई करो एंड बाकी लोगों को भी बताओ इस मूवी के बारे में, सो वो भी हम कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड रहो 106.3 रेडियो ऑलिव पर, अमेजिंग वाले गाने एंजॉय करते रहो एंड कहते रहो जियो बिंदास।

0: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

देखो जी वीकेंड तो चला गया, अब वक्त है मेरे भी यहाँ से जाने का, लेकिन वीकेंड अब एक हफ्ते बाद आएगा, मैं तो कल ही आ जाऊंगी। वेलकम जी 106.3 रेडियो आलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश अंशु, आप मेरे साथ लाइफ मस्त है एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब मैं यहाँ से जाती हूँ, कल आऊंगी। आप तब तक जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखो, खाना खाते रहो, पानी पीते रहो, सनस्क्रीन लगाते रहो, हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना, और अगर आपको मेरी हल्की फुल्की सी भी याद सताए तो रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर आप जा सकते हैं एंड वहाँ पर हम बातचीत जारी रखेंगे, मैसेज कर दीजिएगा, मिल जाऊंगी मैं वहाँ पे आपको। बाकी 3311063 हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर भी मेरे लिए आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आकर देख लूंगी। फिलहाल अपना ख्याल रखो, टाटा बाय बाय एंड कहते रहो मेरे साथ जियो बिंदास।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: आई रेडियो ऑलिव 106.3 लिसनर्स, दिस इज रणवीर सिंह, स्टे ट्यून्ड।

0: Kerala's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.
1: Ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
2: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. फिर मलबार gold and diamonds, gold and summer के साथ buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewellery purchases. Plus, exchange your gold jewellery and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता. इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया. अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया. नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है. और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड.
0: ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर offer.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Olive Music Marathon. Ek ghanta. Non-stop back to back gunning.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू. देखो

0: काविश और कुरादुलेन बलोच की आवाज में फासले भाई साहब, जो इमोशंस ये गाना छेड़ देता है ना, जिन्हें हम बिल्कुल टच भी नहीं करना चाहते पर वो उबल के बाहर आ जाते हैं, बहुत ही सुंदर। और मतलब काविश की आवाज में जो एक अलग टाइप का सुकून है, इट्स ब्यूटीफुल। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, दरिश आगे जी आपके साथ ऑलिव रिचार्ज लेकर अ वेरी गुड आफ्टरनून मेरी जान। ब्यूटीफुल ट्रैक
1: होना था प्यार हुआ मेरे यार,
0: क्या कर लोगे अब बताओ, एंजॉय करो यार, इतनी सुंदर फीलिंग होती है प्यार। तो बिकॉज वीकेंड इज स्टिल देयर, अभी भी बचा है थोड़ा बहुत। जल्दी हो जाएगा तो जितना बचा है उतना एंजॉय कर लो, ठीक है, वरना बाद में लगेगा कि अरे इंतजार तो देखो हमने आज रात से ही शुरू कर देना है वीकेंड का दोबारा से। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ फिलहाल कि आप कैसे हैं, क्या हाल चाल है, हाउ हैज द सैटरडे बीन सो फार, जून 20th कैसा ट्रीट कर रहा है आपको, सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं, और वीकेंड कैसा गया आपका, कल का दिन, आज क्या कर रहे हैं, सब जानना चाहती हूँ। और सबसे जरूरी बात क्या, कि आपने अपने साथ वक्त बिताया है या नहीं, फटाफट से मैसेज करो और बताओ मुझे। और सुनते रहो रेडियो ऑल एफ, चिरू बिंदास।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: This is Deepika Padukone.
4: Deepika Padukone.
3: Radio Olive 106.3.
5: I'm in number one. Radio Olive.
6: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: तनिषा
1: न्यूरा सिस्टर्स की आवाज में जी वे सोनिया जी फ्रॉम द मूवी जब हैरी मेट सेजल. बहुत सुंदर गाना है एंड द इमोशंस यू नो कि इट्स ओके इफ आई एम नॉट मेंट टू बी इन योर लाइफ एंड वी कैन नॉट स्टे टुगेदर वेर एवर यू आर जस्ट बी हैप्पी. दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव एंड दैट्स द सॉन्ग जिस तरह से उसको पोर्ट्रे करता है. इट्स ब्यूटिफुल. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ. ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और एक बहुत ही कैंडिड सा ओपिनियन देना चाहूंगी. ऐसे रियलाइजेशन स्टक हुआ तो आई वाज लाइक या इट मेक्स सेंस यार. सो बताइएगा आप समझ पा रहे हो इसे या नहीं. यू कैन बी द स्वीटेस्ट मैंगो आउट देयर, मतलब सबसे मीठा आम जो भी होता है वो आप हो सकते हो, लेकिन अगर एक इंसान को एप्पल्स पसंद है तो क्या कर सकते हो आप? आप कुछ नहीं कर सकते उसमें. बट दैट विल नॉट चेंज द फैक्ट दैट यू आर द स्वीटेस्ट मैंगो. सो जस्ट बिकॉज समबडी इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट यू द वे यू आर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी है. इट्स जस्ट यू नो यू आर नॉट मेंट फॉर देम, यू आर मेंट फॉर बेटर एंड बिगर थिंग्स. वहां पे लाइफ खत्म नहीं हो जाती है, मूव ऑन करना पड़ता है मेरी जान. हां जी, सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर होना था प्यार. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास रेडियो ऑलिव पर. आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग.

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर, मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: ऑलिव लगा और हो जा रिचार्ज।
3: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
6: In association with
7: Doha Bank,
6: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
0: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता. इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया. अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया. नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है. और यही है द हिवारी इनिशिएटिव, जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड. ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास.
2: This hour is brought to you by
1: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा. In association with
3: Doha Bank,
1: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर. और अगर जीतना चाहते हो iPhone, जी हाँ, तो आपको करना है एक छोटा सा काम है. आपने फटाफट से जाना है रेडियो ऑलिव के पेज पर. रेडियो ऑलिव डॉट क्यू इज द हैंडल. इफ यू हैवंट फॉलोड येट, फटाफट से वो भी कर लो. कर रखा है तो फटाफट जाओ पेज पे. आपको सबसे पहला पिंड पोस्ट दिखेगा, वहां पे उस पिक्चर पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है. बहुत आसान से सवाल है यार. फीफा मैडनेस चल रहा है तो हम बस आपसे यही जानना चाहते हैं, आपको क्या लग रहा है सोफार जितने भी मैचेस देखे हैं, व्हाट डू यू थिंक कि कौन सी टीम इस बार का फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर जाएगी. आपने बस वो अपना प्रेडिक्शन कमेंट करना है. वहाँ पे तीन फ्रेंड्स को टैग करो और फॉलो करो रेडियो ऑलिव और सिटी एक्सचेंज को, बिकॉज सिटी एक्सचेंज इज गोना गिव यू अ ब्रांड न्यू आईफोन अगर आपका प्रेडिक्शन सही निकलता है तो. हाँ जी, फटाफट से पार्टिसिपेट कर लो इसमें और जीत जाओ नया नया फोन एकदम. और सुनते रहो रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.
2: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मलबार गोल्डन डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: हेलो, मैं हूँ नीना गुप्ता।
3: नीना गुप्ता,
2: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
4: ओलिव सुनो

0: तनीषा आपके साथ ऑल रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर, और भाई दोहा बैंक और लुलू आपके लिए जो कमाल ऑफर लेकर आया ना, इट विल मेक योर शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग एंड अमेजिंग. जी, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट अप्लाई फॉर दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, और यू कैन गेट अप टू 500 रियाल का लुलू शॉपिंग वाउचर. एंड नॉट जस्ट दैट, जब भी आप लुलू स्टोर पर स्पेंड करेंगे आपको 5% सेविंग्स मिलेंगी लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में, तो वो आप बाद में रिडीम कर सकते हैं. ऑल्सो यू कैन एन्जॉय एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट करना है, लुलू पर एक रियाल मिनिमम आपने स्पेंड करना है और रिवॉर्ड्स का मजा ले सकते हैं. दैट्स ऑल. दिस ऑफर इज वैलिड टिल 30th June ओनली, सो फटाफट से जाइए और अप्लाई कीजिए फॉर दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, एंड अपनी शॉपिंग को और भी मजेदार बनाइए. और सुन रही है रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है. जबरदस्त

0: Tanisha.
1: You are listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ ऑल एवरी टॉक चल रहा है यहाँ पर. और भाई इतनी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी इंडियाज गॉट लेटेंट शो को लेकर. एंड यू नो समय रैना वॉज इन हाईलाइट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. एंड नाउ फाइनली थिंग्स हैव काम डाउन और थिंग्स आर कमिंग बैक टू प्लेस. समय का जो स्पेशल आया था पीपल लव्ड इट. एंड नाउ लेटेंट का सीजन 2 आ रहा है. यस टुडे. और वो भी नेटफ्लिक्स पे एंड यूट्यूब दोनों पर आने वाला है. तो मतलब अब ये और भी बड़ा और बेहतर होने वाला है. और कुछ तो यू नो वीडियोज और पिक्चर्स ऐसे लीक हुई थी कुछ वक्त पहले दैट फर्स्ट एपिसोड में शायद आलिया भट्ट और शर्वरी होने वाले हैं. जिनकी नई मूवी आ रही है अल्फा वो जुलाई में रिलीज होने वाली है. सो आई थिंक फॉर द प्रमोशन ऑफ दैट मूवी दे मस्ट बी देयर. लेट्स सी आज रिलीज होने वाला है उसका फर्स्ट एपिसोड. तो देखते हैं क्या होने वाला है उसमें. आई एम एक्साइटेड अबाउट इट. और फिलहाल मैं एक्साइटेड हूँ आने वाले गाने के लिए. आइए एंजॉय करते हैं. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: ओनली लगा और हो जा रिचार्ज।
3: ओलिव रिचार्ज रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
6: In association with
7: Doha Bank,
6: make shopping more rewarding.
1: Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

0: मैं हूँ सारिका।
1: सारिका
0: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क। रेडियो

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aapke saath Olive Recharge chal raha hai yahan par. Aur maine na ek Instagram pe reel dekhi thi, and that girl went to Seoul. Yeah, so वो वहाँ पे घूमने गई थी और एक रिवर के पास से वो जब गुजर रही थी तो देखा सब लोग ना ऐसे रिवर के कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और सबके माथे पर एक लाइट चमक रही है. तो उससे पहले लगा कि शायद सब फ़ोन पे लगे हुए हैं, एंड इट वॉज लाइक लाइन से लोग बैठे हुए हैं, बहुत भीड़ है वहाँ पे. तो उसे लगा सब यहाँ बैठ के पानी का मज़ा ले रहे हैं, रिवर साइड पे बैठे हुए हैं और फ़ोन चला रहे हैं अपना, एंड एवरीबडी इज़ इन टू वट एवर वॉज इन देयर हैंड. जैसे ही वो लड़की उनके करीब गई तब उससे पता चला कि सबके माथे पर एक लाइट लगी हुई है छोटी सी, एंड दे ऑल आर रीडिंग बुक्स बिकॉज दैट इज अ लाइब्रेरी. येस, दैट इज अ कॉन्सेप्ट रिवर लाइब्रेरी का. वहाँ पर आप बुक लेकर वहाँ बैठ कर आपको एक छोटी सी हेडलाइट मिलेगी, आप वो लाइट साथ में लगा कर यू कैन जस्ट रीड योर बुक्स बाई द रिवर साइड, एंड दैट इज सो ब्यूटिफुल. आई वॉज जस्ट इमेजिनिंग कि कितना रिलैक्सिंग होगा वो. एक तो कम्फर्ट ऑफ द बुक, दूसरा पानी की वो आवाज़ बहते हुए पानी की, इट्स सो कामिंग. आई रियली वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस वंस इन लाइफ. इफ एवर यू एनी ऑफ यू गो टू सोल, डू नॉट फॉरगेट टू एक्सपीरियंस दिस रिवर लाइब्रेरी. इट इज़ ब्यूटिफुल यार, और भी जगह पर होनी चाहिए. आई द वॉन्ट, क्या बोलते हो बताओ मुझे आपका ओपिनियन. और सुनते रहो रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.

0: Tanisha.
1: Tanisha. You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha ke saath suna apne mundiyan to bachche ki rahi baagi 2 se. टिकटॉक में आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप की. सो व्हाट्सएप का जो व्यू वंस वाला फीचर था सो फार वो अभी फोटोज और वीडियोस पर चलता है राइट. यू कैन सेंड पिक्चर्स व्यू वंस में एंड दे कैन नॉट इवन टेक द स्क्रीनशॉट और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं वहां से. नाउ व्हाट्सएप इज गोना टेस्ट दैट फीचर इन द नॉर्मल मैसेजेस ऑल्सो. यस, जो मैसेजेस हम भेज रहे हैं नॉर्मल जनरल लाइक नॉट द पिक्चर्स और वीडियोस, कोई भी मैसेज हम भेज रहे हैं उसमें भी आपको ऑप्शन होगा व्यू वंस का. ये काफ़ी क्योटिक भी हो सकता है और ये काफ़ी लोगों के लिए सहूलियत भरा भी हो सकता है. इफ़ यू नो यू नो. वेल लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट और कब ये हमारे पास आता है. तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं और सुनते हैं बढ़िया वाले गाने. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you are listening to Qatar's topmost Hindi FM channel 106.3 Radio Olive Jio Bindas.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: In association with
4: Doha Bank,
3: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card.

0: तनिषा
1: तनिषा के साथ है आप रेडियो 106.3 एफएम पर ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर
2: ये है चलती फिरती डिक्शनरी
1: आज मैं अपनी डिक्शनरी से वर्ड लेकर आई हूँ टेमेरिटी TEMERITY एंड इट इज कॉल्ड टेमेरिटी सो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि कुछ लोगों को बहुत ऐसे होता है ना कि कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे लोग शॉक हो जाएं यू नो या फिर कभी कभी कुछ लोग इंटेंशनली भी लोगों को अपसेट करना चाहते हैं तो दैट एक्ट ऑफ यू नो सेइंग समथिंग विच विल शॉक पीपल और विच विल अपसेट पीपल डूइंग ऑल दोज थिंग्स इंटेंशनली इज कॉल्ड Temerity. किसी ना किसी का नाम तो ऐसे देखो ख्याल में आया ही होगा शेयर करना चाहेंगे तो बिंदास आ जाओ 3311063 पर नहीं तो मुस्कुराते रहो अच्छे लगते हो Stay tuned and see you बिंदास
3: Cool Song Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Year

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न। अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। तो फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: Only laga aur ho ja recharge. Olive Recharge.
4: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
3: Olive Recharge.
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
7: In association with
8: Doha Bank,
7: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu MasterCard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

0: तनीशा।
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Tanisha आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर। और एक बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ आपको, और वो बात ये है कि देखो हॉलीडे सीजन चल रहा है एंड यू एक्सपेक्ट जब आप यू नो मिलने जाते हैं किसी से बहुत टाइम के बाद, तो देख अनइंटेंशनली दे एक्सपेक्ट कि कुछ तो बढ़िया सा सरप्राइज मिलेगा, और वो सरप्राइज देने के लिए मालाबार गोल्डन डायमंड्स ने आपके लिए बहुत बढ़िया ऑफर लेकर आया है जी। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू यू नो बाय एनी प्रेशियस जेम ज्वेलरी, डायमंड, गोल्ड, एनीथिंग, तो आप जाइए मालाबार गोल्डन डायमंड्स, क्योंकि वहाँ पर ये ज्वेलरी खरीदने पर आपको मिलेगा फ्री कैश वाउचर। नॉट जस्ट दैट, एनी गोल्ड विच वॉज सिटिंग एंड यू विल लाइक कि यार इसे मुझे बेचना है या एक्सचेंज करवाना है पर लॉस हो जाएगा, रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं, तो अभी स्ट्रेस नहीं लेने का है। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स पर आप एक्सचेंज करवा सकते हैं अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी बिना किसी लॉस के। हाँ जी, फुल आपके कंफर्ट का ख्याल रखा गया है हर चीज में, तो फटाफट से जाइए चेकआउट कीजिए मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के स्टोर, या फिर ऑनलाइन या फिर ऐप पर भी चेक कर सकते हैं। और सुनते रहिए रेडियो ऑल एव, जियो बिंदास।

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड। ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
3: This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा।
1: In association with
5: Doha Bank,
1: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

0: Tanisha.
1: ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन योर रेडियो 106.3 FM, तनिषा आपके साथ ऑल एवरी चार्ट चल रहे हैं यहाँ पर. और अब वक्त हो चुका है मेरे जाने का. मेरी जान, मिलेंगे कल दोपहर 2 बजे नए हफ्ते की शुरुआत फुल एंथुजियाज्म और पॉजिटिविटी के साथ. ऐसी ही उम्मीद करती हूँ मैं. आके हालचाल पूछूंगी और अगर अभी तक अपने लिए वक्त नहीं निकाला है, थोड़ा सा वीकेंड और भी बाकी है, निकाल लो यार. बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन में बैठना, क्योंकि हमसे ज़्यादा बेहतर हमें कोई नहीं समझ सकता. ठीक है, सो अपने साथ थोड़ा सा वक्त निकालो और बाकी चिल करो यार. टेक इट वन डे एट ए टाइम. इतना स्ट्रेस नहीं ले लेते होते कि आगे क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होने वाला है, देखा जाएगा जो होगा. ठीक है, अभी आप रेडियो ऑलिव सुनो क्योंकि बढ़िया गाने चल रहे हैं और कहते रहो जियो बिंदास.
0: Radio Olive Pie. Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Yeah, Ghana, fresh. Fresh song of the hour. Yeah,

0: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑल एयर
3: इन एसोसिएशन विद।
4: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
5: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
4: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।

अभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो।

लग रहा है ये कल ही की तो बात थी जब हम सुपर एक्साइटेड थे वीकेंड के लिए और चला गया। जबरदस्त इवनिंग शुरू हो चुका है, सैटरडे भी आ चुका है और कल संडे आ जाएगा, पहला दिन जो है वो हफ्ते का शुरू हो जाएगा। लेकिन आज मेरे तरीके से तो मेरा आज ही पहला हफ्ते का दिन जो है वो शुरू हो गया, क्योंकि फ्राइडे की छुट्टी थी वो खत्म हो गई। आपका वीकेंड कैसा रहा और कैसा जा रहा है आपका आज का दिन? 4 घंटे अब नहीं है, तैयार हो आप मुझे पूरी अटेंशन देने के लिए? क्योंकि मैं तो तैयार हूँ। सो 3311063 पर आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस भेज दीजिए, आपके मैसेजेस का इंतजार कर रही हूँ। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, करके दे रही है जियो बिंदास।

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार।

0: सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलु स्टोर्स में।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
3: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
3: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
4: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का वक्त आ गया है। हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कारामा सर्टिफिकेशन। पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा। एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कारामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए। सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए।
5: मैं हूँ अदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।

0: कहते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with.
3: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कैसा रहा मेरा वीकेंड? मेरा वीकेंड बढ़िया रहा, नींद भी ली और मैं बाहर भी घूमी और मैच भी देखा मैंने, यस कतर और कनाडा का। बट ठीक है यार, गेम में हार जीत जो है वो लगी रहती है, बट एक होता ना कि आप अपनी टीम के लिए जाते हो, मैच देखते हो, वो बड़ी बात होती है। और दोस्तों के साथ मिलके इस मैच को मैंने इंजॉय किया, खाना पीना हुआ, मजेदार माहौल था। फिर फ्राइडे का मेरा वही था कि मैंने सोचा था कि सिमरन कौर रेस्ट करनी है यार, क्योंकि आपको अपने आप को भी टाइम देना होता है, अपनी बॉडी को टाइम देना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्लान्स तो बनते रहेंगे ना, आपको ही करनी है। गर्दन आपकी है, हिला दीजिए, जबान आपकी है, बोल दीजिए कि नहीं निकलूंगी बाहर, नहीं आने वाली हूं, मेरे को रेस्ट की जरूरत है। ऑफ कोर्स जो बढ़िया चीट मील था वो मैंने किया, एंड उसके साथ साथ मैं क्लीनिंग लेडी सीरीज तो अभी तक देख ही रही हूं, वो इन बिटवीन अब चल रही है। आई विल फाइंड यू का मैंने किसी का रिव्यू देखा था, दो ही दिन तीन दिन पहले शायद ये नेटफ्लिक्स पे आई, और इस सीरीज की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। इसके तीसरे एपिसोड पे हूं मैं, सो अच्छी लग रही है अभी तक तो, मिस्ट्री है, थ्रिलर है, और लग रहा है कि मजा जो है वो आगे आने वाला है। बट लेट्स सी, सीरीज का थोड़ा ये सीन रहता है कि आपको बहुत सारा पेशेंस जो है वो रखना होता है, सो वही मैं रखे जा रही हूँ, तो देखते हैं। आप बताइए, आपने वीकेंड में कुछ नया सोशल मीडिया में देखा, आपका वीकेंड कैसा रहा? 3311063 पर बताइएगा मुझे। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। दोहा बैंक और लुलु लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई। इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है और ऑडियंस चीयर नहीं रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
2: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
3: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: जी तो आज मैच कौन कौन से हैं बताऊं?
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर
2: in association with
3: download the city exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates
4: also palm swiss gold bars are now available at the best price at city exchange
3: your trusted remittance partner
0: to aaj khel kaun kaun si teams ke beech mein hone wala hai इवनिंग्स में सिमरन कौर आपके साथ है और 8 बजे एक मैच होने वाला है नेदरलैंड्स एंड स्वीडन के बीच में और 11 बजे एक मैच होने वाला है जर्मनी एंड आइवरी कोस्ट के बीच में. सो आप कौन सी टीम पर सपोर्ट कर रहे हो, कौन सी आपकी फेवरेट टीम है, ऑफ कोर्स बताइए. फीफा वर्ल्ड कप का फीवर जो है वो ऑन है पूरे कतर में यार, मतलब कतर में नहीं हो रहा है लेकिन एक तरीके से हो भी रहा है क्योंकि इसके फैंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मैचेस को लेके. अपने यहाँ पे फैन जोन्स भी बने हुए हैं, आप लोगों को पता ही है. सो जब आपका मन करे कोई मैच देखने का फैन जोन्स में जाके देखिए या फिर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर मैच जो है वो दिखाए जा रहे हैं. क्योंकि जब मैच देख रहे हो तो लोगों की भीड़ में जाके मैच देखो फिर मज़ा आता है. जिस तरीके से हर गोल पे लोग सीटियां मारते हैं, चिल्लाते हैं, तालियां बजती हैं, फुल वॉल्यूम पे मैच देखा जाता है, उसकी वाइब अलग होती है. क्योंकि ये वाइब मैंने थर्सडे को एंजॉय की है. सिमरन गौरी आपके साथ, जी ओ बिंदास.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas Doha Bank और Lulu लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
1: अब अप्लाई कीजिए Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 Lulu Shopping Voucher.
0: Lulu Stores पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स Lulu Points के फॉर्म में.
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लूलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. Doha Bank Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स. अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस. और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस श्योर इन GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ.
6: Zabardast evening. Make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop. Just

ज्यादातर इंसान क्या कहते हैं कि भाई बहुत सारा पैसा कमाना है। लेकिन मुझे लगता है कि जब पैसा इंसान के पास आ जाता है तो उसको समझ लग जाता है कि पैसा जरूरी है, लेकिन इट्स ओके। इलॉन मस्क की बात कर लो, अभी वर्ल्ड के फर्स्ट ट्रिलियनियर जो है वो बने हैं, लेकिन ऐसा उनके बारे में सुनने के लिए आ रहा है कि अब इतने बड़े इंसान तो वो बन गए, इतना पैसा तो उनके पास है, लेकिन जहां पर वो रहते हैं वो 400 स्क्वायर फुट घर है इन टेक्सास। जी हाँ, इतने छोटी सी जगह पर जो है वो रहते हैं, बट ऐसा क्यों है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन उनको पता है कि यार सारी दुनिया को पता है कि वो बहुत ज्यादा अमीर इंसान है और वो कहीं पे भी रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने चूज किया है कि वो एक ऐसे घर में रहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा है। घर के बारे में उतना ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता है, लेकिन आजकल ये न्यूज जो है वो काफी ज्यादा उनके घर के बारे में जो है वो आ रही है। सो सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास। Say whoa!

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

0: शादी को लेके ना, जिनको शादी करने का शौक होता है, शादी को लेके उनके बड़े बड़े सपने होते हैं, और हर कोई आजकल शादी में कुछ ऐसा करना चाह रहा है जिसके बारे में हर कोई बात करे।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ ये बात है।
0: आपके साथ सो क्या है कि एक देखिए, मैंने न्यूज पढ़ रही थी, मैं एक कपल था जिसकी शादी हो रही थी। अब शादी के टाइम भी आपको पता ना कि आजकल वो बड़ा सा केक जो है वो काटने की बहुत ज्यादा जो है आजकल क्या कहते हैं ट्रेंड में है, और केक जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का होता है, बहुत बड़ा केक और इस तरह से सजा हुआ लदा हुआ केक। लेकिन इन्होंने केक जो था वो केक का स्टाइल तो था, लेकिन ये वेडिंग केक नहीं था। वेडिंग केक की जगह उन्होंने 5 टायर टॉवर ऑफ क्रिस्पी फ्राइड चिकन का चूज किया। सो ये उनका वेडिंग केक था, जो केक ना होके केक की शेप में फ्राइड चिकन था, फ्राइड क्रिस्पी चिकन था। और वो देखा मैंने वीडियो, बड़ा ही क्यूट था यार वो। ठीक है यार, सबका अपना अपना होता है, किसी को केक नहीं चाहिए, उनको कुछ एक्स्ट्रा करना, अगर उनको क्रिस्पी फ्राइड चिकन पसंद है तो उनकी अपनी शादी है, वो केक की जगह वो चूज कर सकते हैं। बट इंटरेस्टिंग है, सिमरन कौर आपके साथ, जी हो बिंदास।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. Experience more with Ooredoo.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
4: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता. इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया. अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया. नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है. और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. कल्चर ट्रैवल्स फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड.
5: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
6: नंबर 106.3 FM रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
8: आरजे सिमरन के साथ.
9: Zabardast evening make you drive golden with.
10: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
11: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: आज तो काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी है। हम लोग प्रो हो चुके हैं कतर में रहते रहते। आज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो था 44 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, क्योंकि दिन में जो था वो 40 डिग्री था और फील्स लाइक 44 था। एंड जब भी सब लोग बाहर काम कर रहे होते हैं, अपनी गाड़ी में होते हैं, सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है, क्योंकि भाई गर्मी तो बहुत होती है, ये तो कहने की बात ही है। मिनिमम टेम्परेचर है आज का 32 डिग्री सेल्सियस एंड विंड जो है 11 किलोमीटर आर की रफ्तार से चल रही है एंड ह्यूमिडिटी जो है वो 21%। सो धीरे धीरे ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ भी जाती है। सो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अगेन फ्रूट्स खाइए जिसमें हाइड्रेशन आपकी बॉडी को मिले, पानी पीजिए वो जरूरी है। एंड सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। Experience more with ओरिडू।
0: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग TNC अप्लाई।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: सबसे बेस्ट वाला सीजन मुझे लगता है कतर में, जब हल्का हल्का मौसम बदलने लगता है और इवेंट स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, सेलिब्रिटीज जो है वो आते हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो है कतर में आके परफॉर्म करते हैं। मैं कह जी सोने की दादी की हालचाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ। सो जॉन लेजेंड की मैं बात करती हूँ, एक बार फिर से जो है वो कतर में आ रहे हैं, क्योंकि उनकी बात ये है कि वो गानों के साथ साथ आपको स्टोरीज भी सुनाते हैं। बड़ा मजा आता है यार, क्योंकि मैं अटेंड कर चुकी हूँ। सो ये जो है 10th of September को होने वाला है QNCC में, जी हाँ, कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में, और हॉल 3-4 में ये होने वाला है 10th September को। इसकी टिकट जो है भी ओपन होंगी या जैसे भी आएंगी तो देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि आपको जॉन लेजेंड को लाइव परफॉर्म करते हुए देखना है। यार मैंने देख लिया, मेरा दिल बड़ा खुश हो गया था देख के, बट आप लोग भी डेफिनेटली देख सकते हो। सो जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, और बहुत सारे ऐसे भी इवेंट चल रहे हैं जो कि फेक पेजेस पे भी आ रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप टिकट बुक करने से पहले, किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करने से पहले थोड़ी समझदारी जो है वो यूज कर लीजिएगा। सिमरन कौर आपके साथ, जय बिंदास।
1: Radio Olive Park. Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh. Fresh song of the hour. Ye gana.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न। अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। तो फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.

आप में से GOT फैन है, मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स फैन है। भाई बड़ा दिल लगा के देखा है गेम ऑफ थ्रोन्स, और ऐसा सोशल मीडिया पे आ रहा है, जैसे कि थोड़ी देर पहले हम स्कैम की बात कर रहे थे, बहुत सारे स्कैम्स हैं, बहुत सारी ऐसी न्यूज आती रहती है, आपको लगता है अरे सही है क्या। तो हमेशा जब भी मैं कोई ऐसी न्यूज देखती हूँ जहां पे मुझे थोड़ा सा भी डाउट होता है, मैं कंफर्म जरूर करती हूँ और आप लोग भी कंफर्म करिए। यहाँ पे एक और रिमाइंडर है आप लोगों के लिए। सो गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन जो था वो 8 सीजन तक हमने देख लिया था, और मैंने रिसेंटली देखा कि एक न्यूज काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे जा रही है जिसमें कह रहे हैं गेम ऑफ थ्रोन्स का जो 9th सीजन है वो आने वाला है, वो जो है वो अपना क्या कहते हैं HBO पे आने वाला है, this and that. I'm like seriously Jon Snow, oh my god, बड़ा मजा आने वाला है। लेकिन जब मैंने ऑनलाइन सर्च किया, क्योंकि जब हमने लास्ट इसका सीजन देखा था ना, तो पता था कि अब इसका शो जो है वो नहीं आने वाला, लेकिन ये न्यूज गलत थी ऑफ कोर्स। तो क्या होता है कि हम कभी कभी बह जाते हैं इन सारी न्यूज में, बहुत सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो चलो एक सीरीज है ना। बहुत सारी ऐसी न्यूज होती है जो कि सामने वाले को इफेक्ट कर सकती है लेकिन वो रॉन्ग होती है, बड़ा इधर उधर फॉरवर्ड करने लग जाते हैं, तो मिस इन्फॉर्मेशन क्राइम है यार, मत करो। आ रही है सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास।

0: Olive 106.3 FM Gio Bindas. दोहा बैंक और लुलु लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक, 106.3 FM रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: एक और वर्ड आप ऐड करने वाले हैं।
1: Gen Z, Gen
2: Z. अच्छा
0: जी, Gen Z BUNS, बंस सुनते ही चाय बन मस्का टाइप से ऐसी फीलिंग आने लग जाती है, लेकिन जैसा दिख रहा है, जैसा सुनाई दे रहा वैसा है नहीं। Gen Z एंड Gen Alpha स्लैंग है बंस, जिसका मतलब ये है कि जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा, वो चीज बहुत ज्यादा बैड है, टेरेबल है, पुअर क्वालिटी है, सो उसके लिए ये वर्ड जो है वो यूज करते हैं। लाइक दैट न्यू मूवी वॉज कम्प्लीटली बंस। ओ माई गॉड, कूल वर्ड। हाँ, सिमरन कौर आपके साथ जी हो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ।
3: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
2: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
3: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टेक्युलर ऑफर।
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ।
7: Zabardast evening, make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

यार ये मैं एक वीडियो देख रही थी दिलजीत दोसांझ का, बड़ी दिल से खुशी हुई यार। दिलजीत दोसांझ आप सबको पता है कि मतलब हमको वो कितना प्राउड फील करवा रहा है, सिर्फ अपनी कंट्री को जो है वो हर जगह पे जाके रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरनेशनली जो है वो अब जिनको चाहे यू नो पंजाबी नहीं भी आती, हिंदी नहीं भी आती है, वो भी दिलजीत का नाम जो है वो जानते हैं। रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें दिलजीत दोसांझ डे जो है वो अनाउंस किया गया है LA में, लॉस एंजलिस में। दिलजीत दोसांझ 6 जनवरी जो है वो उनका डे जो है वो अनाउंस किया गया, उसमें दिलजीत दोसांझ का वो वीडियो था, बड़े ज्यादा खुश हो रहे थे। और उनका एक गाना है ना, तेनु गड्डी च बिठा के ले जावानी में LA नु, तो वो गाना भी गा रहे थे कि अब मैं गा सकता हूँ यार ये गाना। और भी सो या अपनी कंट्री को जब आप प्राउड फील करवाते हो ना, सो भाई साहब वो अलग ही लेवल की चीज होती होगी ना। या हम लोग भी करवा ही रहे हैं यार, देखो ना इंडिया से कतर में आके हम अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो भी प्राउड वाला फील होता है यार। सिमरन कौर आपके साथ जी हो बिंदास।

0: CB2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स. अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस. और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी. विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
3: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं. यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. यहाँ हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन. FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव.
4: In association with
3: download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
5: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
3: your trusted remittance partner.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
7: सिमरन के साथ
8: जबरदस्त इवनिंग. मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
9: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
10: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: नमस्कार वणक्कम, मैं हूं जैकी श्रॉफ।
1: जैकी श्रॉफ
2: रेडियो 106.3
0: जियो बिंदास।
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

जैसे हम थोड़ी देर पहले मिस इन्फॉर्मेशन और स्कैम की बात कर रहे थे कि किसी भी नोन लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है, रेडियो ऑलिव के नाम पे भी बहुत सारे पेजेस बन गए हैं, हमको बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के लिए आते हैं कि रेडियो ऑलिव से मैसेज आया है, ये आप हो क्या, हमने ये प्राइस जीत लिया। देखो डार्लिंग, ऐसा नहीं है, स्कैम आजकल हर जगह पे हो रहा है, तो हम लोगों को ही थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, होशियार होना पड़ेगा और ऐसे लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि वो जो फेक पेजेस बन गए हैं रेडियो ऑलिव के, वो आपसे आपके कार्ड की डिटेल्स मांग रहे हैं, तो हम आपसे आपके कार्ड की डिटेल्स नहीं मांगते भाई, हम आपको फ्री गिफ्ट देते हैं जो भी किसी भी कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करते हैं। सो मेक श्योर कि आप ऐसे किसी भी लिंक पे क्लिक मत करिए, और रेडियो ऑलिव का जो पेज है वो आपने देखा ही हुआ है ऑलरेडी। सो किसी भी लिंक पे क्लिक करने से पहले, कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से पहले, हमारे पेज पे आके, रेडियो ऑलिव के पेज पे आके एक बार चेक कर लीजिएगा, हमसे कंफर्म कर लीजिएगा। इधर 3311063 पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा हमको कि ये ठीक है क्या, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, रेडियो ऑलिव को तो फॉलो कर ही लीजिए, उसके साथ साथ रेडियो ऑलिव की एप्लीकेशन को भी अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas Doha Bank और Lulu लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 Lulu शॉपिंग वाउचर।
0: Lulu स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स Lulu पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए Lulu पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026। Doha Bank Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Football boundaries नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोब में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।
0: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: Olive, Bolo Bindas.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
2: साथ। Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: कभी आपने अपनी लाइफ में किसी चीज का इंतजार किया है?
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: इंतजार हम सबने किया है। इंतजार किसी इंसान का हो सकता है ज्यादातर, और वो किसी चीज का हो सकता है, किसी रिप्लाई का हो सकता है, किसी ईमेल का हो सकता है, किसी जॉब का हो सकता है। हर इंसान अगर देखा जाए तो किसी ना किसी इंतजार में अपनी लाइफ में जो है वो बैठा है। कभी कभी जो लोग इंतजार कर रहे होते हैं जिस चीज का, उसके ऊपर वर्क करते हैं ताकि उनको जो है वो रिजल्ट मिले और इंतजार जो है वो खत्म हो जाए। कुछ लोग सिर्फ इंतजार करते हैं और उस चीज पे कोई काम नहीं करते, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि देखो यार, इंतजार करना भी सही है, इंपेशेंट होना बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन आप इंपेशेंट हो रहे हो, सिर्फ इंतजार ही कर रहे हो, लेकिन आप उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे, तो अपना हाथ पैर हिलाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऊपर वाला भी कहता है कि मैं भी तभी तुमको चीजें दूंगा जब तुमको एहसास होगा और तुम मुझे ये लगेगा कि हाँ तुमको ये चीज वाकई में ही चाहिए। तो अपनी मेहनत भी थोड़ी सी जरूरी है, सिर्फ इंतजार करते रहना ही जरूरी नहीं है। जब आपको कई कई बार ये भी लगता है कि यार मैंने इंतजार भी किया, इसके ऊपर काम भी किया बहुत सारा, फिर भी वो चीज नहीं मिली, तो फिर छोड़ दीजिए ऊपर वाले पे, वो कुछ सोच समझ के कर रहा होगा कि वो चीज आपको नहीं दे रहा। सुनर और लेटर ये चीजें हमको समझ लगती है। सिमरन गौरे आपके साथ चाहिए बिंदास
2: रेडियो ऑलिव पर। आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग TNC अप्लाई।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

देखो यार, आप लोगों के नाम लेती हूँ क्योंकि इसके बगैर तो जबरदस्त इवनिंग्स नहीं होता है यार। नेम गेम का रूल क्या है? नेम गेम का रूल ये है कि आप अगर मुझे अभी सुन रहे हो तो आपको अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। मेरा नंबर है 3311063। ओके, सो कुछ लोगों का ये होना होता है कि कई बार बहुत सारे मैसेजेस जब आ रहे होते हैं और आपका नाम बीच में रह जाता है तो आप लोग वॉइस नोट भेजना चालू कर देते हो, तो मैं बोलते बोलते दोस्त वॉइस नोट कैसे सुनूंगी आपका। तो आपको हाय हेलो कुछ नहीं लिखना है। ओके, सो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना नाम जो है वो लिखना है। क्विकली आप अपना नाम लिख के भेजिए 3311063 पर। नाम स्टार्ट कर रहे हैं इम्तियाज अली, यूसुफ, समीर, अब्रार, नजीमुल्ला, रवि, अजीज, इमाद, किसी ने अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम दोस्त, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना नाम लिखना है। प्रिंस जी थैंक यू सो मच, निशा जी थैंक यू सो मच, इब्रान अली ऑलरेडी मैं आपका नाम ले चुकी हूँ, शाबाज जी, सुमोन जी थैंक यू सो मच, वकास जी थैंक यू सो मच, मोहम्मद आजम जी, बिक्रम जी थैंक यू सो मच, मीनू जी थैंक यू सो मच, रवि जी ऑलरेडी आपका नाम ले चुकी हूँ, नुमान जी थैंक यू सो मच, रुचिका जी थैंक यू सो मच, सोनम जी थैंक यू सो मच, विलियम जी, फैजल जी, हामिद जी थैंक यू सो मच, इमरान जी थैंक यू सो मच, सामी जी थैंक यू सो मच, संधु साहब थैंक यू सो मच, किसी ने सत श्रीकाल लिख के भेजा, सत श्रीकाल जी अपना नाम लिख दो दोस्त, श्याम जी थैंक यू सो मच, जुल्फी जी, शशिकांत जी, राजीव जी थैंक यू सो मच, यासीन जी थैंक यू सो मच, ए के जी थैंक यू सो मच, नूरा जी, सीमा जी थैंक यू सो मच, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया, अब आपने सुन लिया अपना नाम, तो थैंक यू लिख के भेजो, थैंक यू के साथ अपना फेवरेट वाला इमोजी लिख के भेजो, मतलब बना के भेजो। जियो बिंदास।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

चलो दोस्तों, 4 घंटे खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और सिमरन कौर के यहाँ से घंटी मारने का टाइम आ चुका है। कल शाम को संडे को हफ्ते के पहले दिन आपसे होती है 5 बजे मुलाकात जबरदस्त इवनिंग्स में, मिडनाइट लाउंज को अब करिए एंजॉय। अब मेनू करना रेस्ट यार, पता है सैटरडे वाले दिन में थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, मतलब थोड़ा जल्दी ऑफिस जो है वो आना होता है, सो या फिर मेरे को अभी तक ऐसा लगता अरे अरे अरे प्रिंसेस तो थक गई है यार बोल बोल के मैं कभी नहीं थकती, ऐसे थक जाती हूँ। ठीक है चलो फिर, कल तो इधर ऐश कर दे रहे हो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल लगाओ, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई। इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: जोकर
1: मिडनाइट लव।
2: हाय, यस, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम। दिस इज मी मुस्कान विद यू। शो का नाम है मिडनाइट लाउंज और साथ ही साथ आज है सैटरडे। सो वेरी गुड इवनिंग। और आज की किताब सिर्फ एक नॉवल नहीं है, एक आईना है, एक मिरर जिसे आप कह सकते हैं, और उस मिरर का नाम है राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ला ने ये किताब 1968 में लिखी थी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ इस किताब के बारे में। आज भी इसे पढ़कर लगता है कि शायद कल ही लिखी गई है, इन 2026 आई एम टॉकिंग, राइट। कहानी एक छोटी सी जगह, एक छोटे से गांव की है, लेकिन एक्चुअली में कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हर चीज़ आपको दिख जाएगी और इंसान की आदतों की कहानी है ये। इस किताब की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सटायर, यानी हंसी हंसी में बहुत कुछ कह देना। और मुझे ऐसा लगता है कि राग दरबारी इज नॉट जस्ट अ नॉवल, इट्स अ डायग्नोसिस। और मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो लिटरेचर होता है उसकी पहचान क्या होती है, कि वो कितने भी टाइम के बाद पुराना नहीं लगता। आप शेक्सपियर की किताबें जब आज भी पढ़ते हो तो वो आपको रेलिवेंट लगती हैं। प्रेमचंद की कोई भी किताब आज आप पढ़ोगे तो आपको बहुत रेलिवेंट लगेगी। वैसे ही कुछ नई चीज़ें बहुत आपको नई लगती हैं लेकिन कुछ दिन बाद पुरानी हो जाती हैं। पर कुछ किताबें और स्पेशली लिटरेचर जो है वो सालों तक नया लगता है। सो आज रात शुरू करते हैं आपसे, और बताइए आप मुझे कि कौन सी ऐसी किताब आपने पढ़ी है जो आपको सालों के बाद भी, चाहे वो 10 साल पुरानी किताब हो या 20 साल पुरानी, पर आपको हमेशा वो बहुत रेलेवेंट लगती है। 3311106 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव।

सो आज थोड़ा सा फैमिली की बात करते हैं, और मुझे लगता है चाहे आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, नेपाल से हो, हर साउथ एशियन फैमिली में कुछ कैरेक्टर्स परमानेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही एडवाइजर अंकल जो आपको हर एक चीज़ से लेकर क्रिकेट तक हर चीज़ का सॉल्यूशन बताते हैं। एक कंपैरिजन करने वाली आंटी जो हर बात में किसी और का एग्जाम्पल देती है, और एक फैमिली कॉमेडियन जो सीरियस फंक्शन को भी स्टैंड अप शो में बदल देता है, और एक साइलेंट ऑब्जर्वर जो काम करते करते अपने कम बोलते बोलते चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, लेकिन जब बोलता है तो सीधे दिल पर लगता है। सो एक फैक्ट बताती हूँ, सोशोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर फैमिली एक मिनी सोसाइटी होती है। उसमें लीडर्स होते हैं, स्टोरी टेलर्स होते हैं, पीस मेकर्स होते हैं, और रिबेल्स भी होते हैं। इसीलिए फैमिली गैदरिंग्स कभी बोरिंग नहीं होती, यहाँ कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। पर मुझे ना जाने क्यों फैमिली गैदरिंग्स में जाने में बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बहुत पॉइंट आउट करते हैं, हर चीज़ को पूछते हैं, अगर वेट थोड़ा सा बढ़ गया तो टोकेंगे, घट गया तो टोकेंगे, स्किन कलर के ऊपर, स्किन के टेक्स्चर के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर बात करना पसंद है इन्हें। तो आपके घर का सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर कौन है और उनकी फेमस लाइन क्या है? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिस, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास ये है मिडनाइट लाउंज,
2: ये है मिडनाइट लाउंज।
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

आज एक ऐसी किताब की बात करती हूँ जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत किताबों में काउंट किया जाता है। किताब का नाम है द लिटिल प्रिंस। ये किताब 1943 में पब्लिश हुई थी और आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रांसलेटेड जो लैंग्वेजेस हैं वो इसी किताब की हैं। अब सुनने में लगता है कि ये बच्चों की कहानी होगी, द लिटिल प्रिंस नाम भी वैसा ही है, लेकिन जो लोग इसे पढ़ते हैं या जिन्होंने इसे पढ़ा है वो जानते हैं कि एक्चुअली किसके लिए है, कौन से लोग इसे रिलेट कर सकते हैं। बुक एक फेमस लाइन के साथ सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी, विच वॉज ऑल ग्रोन अप्स वर वंस चिल्ड्रन बट ओनली फ्यू ऑफ देम रिमेंबर इट, राइट। हम सबके साथ ऐसा ही है और शायद यही पूरी किताब का मैसेज भी है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम नंबर्स में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, सैलरी, फॉलोअर्स, एज, टारगेट्स, ये सब चीज़ें हमें याद आने लगती हैं और बाकी सब हम भूल जाते हैं। सो बच्चे जो होते हैं ना वो क्लाउड्स देखते हैं, स्टोरीज बनाते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और वंडर फील करते हैं। इवन रिसर्च कहती है कि क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी की फाउंडेशन है और बच्चे नेचुरली क्यूरियस होते हैं। तो आप मुझे बताइए कि कौन सी चीज़ है जो हम बड़े होते होते भूल जाते हैं। 3311106 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC applied.

सो आज एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, कुछ ना करना। यस, जी हाँ, नथिंग। आज के ज़माने में अगर कोई इंसान 30 मिनट चुपचाप बैठा हो तो लोग पूछते हैं सब ठीक तो है ना, क्योंकि हमें प्रोडक्टिविटी को आइडेंटिटी बना दिया है हमने। बिजी रहना अचीवमेंट लगता है हमें, रेस्ट करना गिल्ट फील होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इटली में एक कॉन्सेप्ट है, डोल्से फार नेंटा, ठीक है। अब इसका मतलब है द स्वीटनेस ऑफ डूइंग नथिंग। और कई सारी कंट्रीज में ऐसे सिमिलर आइडियाज़ भी हैं, यानी कि रेस्ट जो है वो लेजीनेस नहीं है, रेस्ट भी एक स्किल है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ब्रेन के बेस्ट आइडियाज़ ना अक्सर तब आते हैं जब आप वो एक्टिवली काम नहीं कर रहे होते, चाहे आप वॉक कर रहे हो, विंडो के बाहर देख रहे हो, या फिर सिर्फ यू नो कैब में बैठ के एक लॉन्ग ड्राइव के लिए या फिर अपने घर के लिए जा रहे हो। ये सब क्रिएटिव थिंकिंग से लिंक्ड है। तो शायद हर मिनट प्रोडक्टिव होना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी खाली रहना भी प्रोडक्टिव होता है। और आज का मेरा सवाल भी यही है कि आप बिना फ़ोन, बिना टीवी और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कितनी देर बैठ सकते हो। बाय द वे, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो आराम से अपने साथ घंटों टाइम बिता सकती हूँ बिना किसी फ़ोन के, बिना किसी यू नो काम के। इट जस्ट कि आई लव टू स्लीप, आई लव टू रीड। सो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये बिजी रहना इतना ज़रूरी है या फिर आराम से कुछ टाइम के लिए आप रेस्ट कर सकते हो। 3311063 इज़ माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास।

Good evening. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. और शो का नाम है Midnight Lounge. So आज बॉलीवुड की बात करते हैं, लेकिन फिल्म्स की नहीं, डायलॉग्स की. और वो भी उन डायलॉग्स की जो सिनेमा हॉल से निकलकर हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन गए. सोचिए उनके बारे में. कितनी बार आपने सुना होगा कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, या फिर मुगैम्बो खुश हुआ, या फिर वो शोले का सबसे फेमस डायलॉग कितने आदमी थे. इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर हिट डायलॉग फेमस नहीं होता, और हर फेमस डायलॉग हिट फिल्म से नहीं आता. कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो लाइन सिंपल, इमोशनल और रिपीट करने में इजी होती हैं, वही कल्चर का पार्ट बन जाती है. और बॉलीवुड ने हमें ऐसी हजारों लाइंस दी हैं, कभी मोटिवेशन के लिए, कभी मजाक के लिए, कभी सरगैज़म के लिए, और कभी बस कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. शायद इसीलिए सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करने वाला, यू नो, सिनेमा है.

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

So, एक किताब की बात करते हैं अभी, मतलब नॉट जस्ट वन बुक, एक आइडिया है एक्चुअली, एक ऐसी कौन सी किताब है जो हर इंसान को 30 साल की एज से पहले पढ़ लेनी चाहिए। कई सारे रील्स देखे हैं मैंने, कई सारी ऐसे यू नो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो किताबें पढ़ते हैं और वो बताते हैं कि एक्चुअली आपको इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए, उसके रीजंस भी बताते हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM, दिस इज़ मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। अब आंसर सबका अलग होगा, किसी के लिए द लिटिल प्रिंस उन किताबों में से एक होगी, किसी के लिए गुनाहों के देवता और किसी के लिए मेंस सर्च फॉर मीनिंग। ये सब किताबें बहुत अमेजिंग बुक्स में से एक हैं और किसी के लिए ट्यूसडे विद मॉरीज़, ये भी बहुत ही अच्छी किताब है। सो इंटरेस्टिंग बात ये है कि बुक हमें इंफॉर्मेशन कम देती हैं पर प्रस्पेक्टिव ज़्यादा देती हैं, सोचना सिखाती हैं, समझना सिखाती हैं, और प्रस्पेक्टिव ही वो चीज़ है जो लाइफ के डिफ़िकल्ट मोमेंट में काम आता है। अमेरिकन राइटर हैं जॉर्ज आर आर मार्टिन, उन्होंने एक बार कहा था कि अ रीडर लिव्स अ थाउजेंड्स लाइव्स, मतलब वो उनको ऐसा लगता है कि शायद इसीलिए रीडिंग इतनी पावरफुल है क्योंकि हम सिर्फ पढ़ते हैं, इमेजिन करते हैं और वो लाइफ जो हम यू नो एज अ रीडर देख रहे होते हैं जो किताब में, उसमें हम घुस जाते हैं क्योंकि एक लाइफ में हम सब कुछ एक्सपीरियंस तो नहीं कर सकते। अब आप सोचो कि आपको यूरोप ट्रिप करना है तो हो सकता है आप कर लो, पर कितनी सारी कंट्रीज हैं जो आप नहीं देख सकते, पर किताबों से आप पढ़ के बहुत कुछ सीख सकते हो। सो बुक के थ्रू हम दूसरों की जर्नी समझ सकते हैं। सो आई विल से कि कौन सी ऐसी किताब है जिसने आपका नज़रिया बदला और आपको लगता है कि यार सबको पढ़नी चाहिए। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।
1: ये है मिडनाइट लाउंज।

एवरी डे आई हैव वन ऑब्जर्वेशन. लाइफ में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें कोई बचपन में बता देता है लेकिन हम तब ना समझते नहीं है, और फिर एक दिन अचानक समझ आता है कि जैसे सोना यानी कि स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ मैटर करती है, टाइम आराम से बीत जाता है, आप बस परेशान मत होइए. और पेरेंट्स भी कई बार सही होते हैं. सो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पता है क्या है कि स्ट्रेस करने का जो सिचुएशन है वो सॉल्व नहीं करती. हमेशा जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमें कभी भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता. और फैक्ट भी यही है कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि विजडम नॉलेज से अलग होती है. नॉलेज बुक से मिल सकती है लेकिन विजडम अक्सर एक्सपीरियंसेस से आता है. इसीलिए कुछ जो लेसन्स होते हैं लाइफ के वो एक्सप्लेन तो किए नहीं जा सकते, सिर्फ जिए जा सकते हैं. और मुझे लगता है कि हर एज का ना अपना एक अलग सच होता है. 20 में आप जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है 30 में उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, और 40 में प्रायोरिटीज एकदम बदल जाती हैं. सो एज के साथ साथ सारी चीज़ें बदलती हैं. और आप से मैं आप यही सवाल पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको थोड़ी देर से समझ आई और आपको लगा कि यार ये थोड़ा सा समझने में देर हो गई लेकिन जब समझ आई तो लाइफ बहुत आसान हो गई. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. ये है मिड नाइट लाउंज. बाय द वे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे समझ में आया कि परेशान होना सॉल्यूशन है ही नहीं. अगर कोई सिचुएशन आपको परेशान कर रही है तो आप अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट कीजिए, किसी और तरफ अपना ध्यान लेकर जाइए और उस टाइम को बस कैसे भी निकाल दीजिए. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

So yes, we were talking about life, we were talking about books, we were talking about Saturday. और सुन रहे हैं आप Radio Olive 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान आपके साथ. और आज की रात का आखिरी थॉट अगर मैं बात करूँ तो इमेजिन कीजिए, आप एक पुरानी लाइब्रेरी में एंटर करते हो, हजारों किताबें हैं उसमें, हजारों पेजेस हैं और लाखों कहानियां हैं. अब इमेजिन कीजिए एक लाइब्रेरी बोल सकती तो वो क्या कहती. शायद वो कहती कि मैं यार स्टूडेंट्स के एग्जाम्स के लिए स्ट्रगल करके उनको देखती हूँ, या फिर वो कहती कि मैंने लोगों को अपनी फेवरेट किताब डिस्कवर करते हुए देखा है, या वो कहती कि मैंने लोगों को आंसर ढूंढते हुए देखा है, या शायद वो कहती कि मैंने लोगों को खुद को ढूंढते हुए देखा है. सो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दुनिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में कुछ हजारों साल पुरानी

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

पुरंदर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM।